0: work. He lives in the desert with his wife and two kids for 8 months every year when the seawater recedes after the monsoon. His 13-year-old son, Rudra, often helps him. Kishan's family have toiled here for centuries. He joined the trade when he was just 8 years old.
1: हम 8-10 पीढ़ी से ये आगरिया परिवार है और हमारी जो आगरिया की जिंदगी है वो ऐसी है बदतर है कि पूरा का पूरा दिन रात लकड़ा कादेव कीचड़ में हाथ जटा के रहना पड़ता है अगर रात को सो गए तो भी हमें नींद नहीं आती है क्योंकि हमारा पाटा में पानी भरा हुआ होता है और वो कच्ची मिट्टी से बना होता है कब किस टाइम पे पवन आ जाता है और कब टूट जाता है उसका कोई ठिकाना नहीं होता है
0: At the end of a good season, Kishan can hope to make between $350 to $500 for his labor. He hopes his son will have a better future.
1: Our life is gone, but we have to make something and write something. We have to do anything.
0: For all the hardships, Rudra sees his father's sacrifices differently.
2: I feel good to help my मेरे पापा भी मजदूर गर्व है उन्होंने पढ़ा नहीं है फिर भी इतने पाटे का काम करके सर काम करके मुझे पढ़ाना चाहते हैं इसलिए
0: Making salt by hand is exhausting work. Agarias pump highly saline groundwater from deep beneath the desert floor into shallow pans. The water eventually evaporates, leaving behind white salt crystals. Here, workers are only days away from harvest. But then, disaster strikes.
3: द्वातरफ કચ્છમાં પણ વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે. પૂર્વ કચ્છ અને પશ્ચિમ વિસ્તારોમાં ભારે પવન સાથે ઝરમર વરસાદ થયો છે.
0: A powerful storm tears across the region, leaving much of the community cut off. 5 days later, the full extent of the damage is still emerging. Today, activist Anand Solanki has come to talk to the families and assess the impact. Most Agarias survive on loans they repay through salt production. Now they fear the storm has pushed them deeper into debt.
4: એક આખું વરસ નડે અમને એક વરસ આખું નડે આ જ્યાં લગી અમાર માથે કરજ છે ને એ પતે નહીં ત્યાં લગી અમને નડે
0: Many families were already only just surviving.
5: એ એસે કહેને વાલે હે કે ઇસ સાલ અમારા જો 50-60 હજાર બચને વાલા થા વો નહીં બચેગા
0: With losses mounting and no relief in sight, Anand is trying to unite workers to demand support from the government.
5: આજે આપણે દાદાએ મીટિંગ રાખી અને એક બપોર પછી આવ્યું બે ભાવ છોડમજી આપણે પણ આગરિયાઓને નુકસાન થયું હોય એ આગરિયાઓને પણ કહેજો એટલે આપણા એ પ્રશ્નોને રજૂઆતને ડીએસી બધા અધિકારી આવવાના એટલે બધાને મીટિંગનું જાણ કરી અને એ 1.5 વાગે બધાને આવવાનું કહેવા
6: બધાને કહી દીધું
0: વર્કર્સ આર નોટ ધ ઓન્લી વન્સ ફેસિંગ લોસીસ રામબાભાઈ ઇઝ અ ટ્રેડર હુ ગેવ લોન્સ ટુ ફેમિલીઝ ઇન એક્સચેન્જ ફોર ધીસ સીઝન્સ સોલ્ટ હાર્વેસ્ટ
5: અને મીઠામાં તો
7: મીઠામાં બધું બગડી ગયું
5: ઉડરના કારણે આમ
7: ઉડરના વરસાદના લીધે બધું ઓછું થઈ ગયું
5: આમ જો આમ એવરેજમાં
7: એવરેજ ઘટાડો લગભગ
5: કેટલો
7: 50% કરી નાખે પડે
0: ટુ ફેચ અ ગુડ પ્રાઇસ સોલ્ટ મસ્ટ બી પ્યોર વ્હાઇટ બટ ધ સ્ટોર્મ હેઝ કન્ટામિનેટેડ મચ ઓફ ધ હાર્વેસ્ટ
1: હળ તમે મીઠું જો બતાવો તમને જુઓ તમે કાલ પમદાળે આયા નતા જો આવી પરિસ્થિતિ છે
7: આત્મલો
0: કિશન ટુક લોન્સ ફ્રોમ રામબાભાઈ
1: नमक ये वाइट था एकदम बिल्कुल अब 10 दिन के बाद इसका पारा भर जाता और पारा भरने के बाद हमारी इसकी विचाई हो जाती और सामने वाला खरीद लेता लेकिन अब कोई इसको हाथ पकड़ेगा नहीं क्योंकि पूरा का पूरा बेकार हो गया
0: द स्टॉर्म ऑल्सो डिस्ट्रॉयड हंड्रेड्स ऑफ सोलर पैनल्स यूज्ड टू पंप अंडरग्राउंड सॉल्ट वाटर फॉर दीज फैमिलीज रिप्लेसिंग देम विल बी इम्पॉसिबल विदाउट टेकिंग ऑन मोर डेट
6: अभी ये नमक बंद हो जाएगा, क्योंकि ये पानी खाडा में 35 से पानी निकालता है, अभी तो ये सोलर है नहीं, पानी कहाँ से निकाले।
0: किशन सेज द स्टॉर्म हैज लेफ्ट हिम एंड हिज फैमिली डेवास्टेटेड।
1: बच्चे तो रो रहे थे रात को, ना हमारे पास कुछ सुबह में चाय पीने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि डब्बा डुबली सब उड़ गया था हमारा, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा नहीं है, खाने के लिए रोटी भी नहीं बची, इसलिए हम क्या कर सकते हैं। और सरकार से यही अपेक्षा है हमारी कि पूरे जो आगरिया विस्तार है उनको सहाय मिलनी चाहिए, ताकि पूरे के पूरे घर बर्बाद हो गए हैं, किसी के पास कुछ नहीं बचा है।
0: Activists are asking the salt workers to document their losses so they can inform the authorities.
8: Now, historically, this is a community that has not received a lot of help from the Indian government. We're going to track over the next few months whether that changes and to try and understand why this community that produces an essential commodity is so marginalized.
0: The Gujarat government says it provides welfare services to the community, including mobile health vans, often the only medical care available to families living deep inside the desert. Today, we've been given access to ride with one of them.
9: Hello, sir. How are you?
0: But there's a change of plans. Instead of traveling to storm-affected Agaria settlements, they are being diverted to a temple event elsewhere in the desert.
10: ये जो बाकी गाड़ी है ना झिंझवाड़ा वो भी करानी है,
9: हाँ।
10: वो थोड़ा अभी डिसफंक्शनल है, इसलिए हमारी गाड़ी उधर पोस्ट हुई।
9: तो आप जिन फैमिलीज को सर्व करते हो अगरिया फैमिलीज को, अब उनको मदद नहीं मिलेगी आपसे?
10: वो मैम वो क्या होता है, वो पीएचसी तक जा सकते हैं, ऐसा इन्होंने कहना ऊपर से।
0: द स्टाफ टेल अस डाइवर्जंस लाइक दिस आर कॉमन।
11: मैं आपको बता रहा हूं, एक दो महीने में 10 के 15 ऑर्डर है हमारे एक ही वाहन के। ये वैन है अगरिया के लिए, तो खाली नाम अगरिया के लिए, इसको किसी भी किसी एमएलए का फंक्शन हुआ, किसी का भी गवर्नमेंट ने किसी ये ध्वज वंदन होता है राष्ट्रीय मध्य कुछ भी हो इसमें उसका ऑर्डर कर देते हैं, जो इसके लिए है उसको लाभ कुछ नहीं है।
0: The Gujarat government says it has assigned 12 mobile health units to serve Agarias through the salt season. As we cross the desert, a salt worker flags down the van asking for help. But just as the doctor gets out to assist, he receives an urgent phone call.
10: Rathod Charumati, main kidu tu
12: hello
10: peche ma jo ke ne bacche ame patient jo tha na ame record karu kitne upar rasta ma ache
12: wo rok rahe the par ab hum upar se phone aaya hai ki aapko udhar pahunchna hi padega ye fatafat jawab do ab kya rokta nahi fatafat jawab do।
0: When we arrive at the temple, only a small number of patients seek treatment. None appear to be salt workers. Even organizers here acknowledge that there's a severe shortage of services for Agarias.
13: आ प्रसंग पति या पची रणमा अगरियावनी आ लोको सेवा करे इमा अम्मे वांधो नथी, पण अमारी एक एवी रजूआत है कि जे झिंझुवाड़ा गामनी जे गाड़ी फाड़वेली है ए छेले 6 महीना थी अमदावाद में रिपेरिंग पड़ी है अने एना कारणे अगरियानो जे सुविधा मळवी जोए मळती नथी।
0: As we leave, the van's driver Chintan pulls us aside.
11: मैं आया 17 साल हुआ, स्टाफ पूरा कभी भरा ही नहीं। आप देखते हो तो अंदर से रोना आता है कि ऐसे आदमी इतने हमारे देश के लिए हमारे लिए इतना मीठा, जो खाने में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ चाहिए, मीठू, मीठा नहीं होगा तो खाने में मज़ा नहीं आएगी, वो हमारे लिए इतना करता है तो हम उसके लिए कुछ कर नहीं पाते, मतलब हमारे हाथ में नहीं है।
0: To find out how widespread this problem is, we travel about 100 kilometers to Gujarat's west coast, where thousands more workers harvest salt. At a health clinic in the region, we join Dr. Prajapati.
14: आपको वहाँ पे जाके outreach करना है, community के साथ काम करना है, ठीक है? चलो।
0: Today, Dr. Prajapati's team is vaccinating children living in the salt pans. Their first patient is this 10-month-old baby.
15: बस, thank you.
14: तो ये केस में क्या, इनका 9 महीने तक यहाँ पे रहते हैं, तो हम जहाँ जब भी आते हैं, तो इनको हम और सर्विस भी दे पाते हैं, उनका हेल्थ एजुकेशन भी कर सकते हैं और जो इनको जो भी प्रॉब्लम है वो हमें बता सकते हैं।
0: At another settlement, they treat a man with a severe skin infection.
16: तो तातर क्यों है तेरा? क्रोध क्यों है?
14: वो खंजोड़ा बच्चा तुमने?
16: खंजोड़ा हुआ ना उठा है।
14: क्या क्या चाहिए? બે હાથમાં છે
16: હાથમાં
14: બધો
16: મટી જાન થાય મટી જાન થાય
14: શું કામ કરો તમે અગર મીઠામાં જેવન થાય કોજે
16: મીઠામાં નહી કરતો ધંધો અમારે
8: ડોક્ટર્સ સે Prolonged exposure to salt can leave workers with chronic skin infections, cracks, burns, and painful lesions.
14: अब तुमने दवा आपू तुम रेगुलर करजो एना तो फरक ना पड़े तो एक बार पीएचसी आजो पीएचसी मिठी लो का तो પછી ચામડીના ડોક્ટરને એકવાર બતાવવું પડશે.
8: Other common complaints include chronic pain, deteriorating eyesight, and reproductive health complications. But the doctor says there's only so much he can do.
14: वो हमारे पास स्टाफ की शॉर्टेज है नहीं रिसोर्सेज कम बढ़ रहे हैं वो थोड़ा इश्यू रहता है हाँ ऑलमोस्ट हर जगह पे इश्यू है ये
8: Shortly after the storm, we visit Kishan's family again. His son Rudra is preparing for an important exam.
17: आपका सबसे अच्छा वाला सब्जेक्ट विषय कौन सा है
2: गणित
17: जब आप रण में होते हो पढ़ाई करने में मुश्किल होती है
2: यहाँ लाइट नहीं होती इसलिए दीवे से करना पड़ता है पर पवन लगता है तो दीवा भी उलझ जाता है इसलिए
8: Watching Rudra study brings back difficult memories for Kishan.
1: दुख बहुत होता है कि अगर आज मैं मेरे बाबा मेरे को पढ़ाते लिखाते तो मैं ये मेहनत नहीं करता और मेहनत करना हर इंसान को ज़रूरी होता है मेहनत करने से कोई वो नहीं है लेकिन जो पढ़ाए लिखे होते हैं उनको मेहनत तो करनी पड़ती है लेकिन कलम से होता है और ये मेहनत नहीं है ये मजदूरी है
2: पगला ना एमना तरफ वड़िया
8: द नेक्स्ट मॉर्निंग रुद्रा गेट्स रेडी फॉर स्कूल इट्स ओनली अ शॉर्ट वॉक अवे फ्रॉम द फैमिलीज हट
1: बाय
8: This desert was declared a wildlife sanctuary in the 1970s to protect the endangered Indian wild ass. That makes it difficult to build permanent infrastructure here. So, the Gujarat government has set up about 24 bus schools for Agariya children.
18: ધોરણ 6 થી 8 નું હિન્દી નું પેપર છે. પ્રશ્નોના જવાબ સારી રીતે લખીશું.
8: But advocacy groups have repeatedly warned the schools suffer from teacher shortages.
2: वहाँ अलग अलग साहिब होते हैं जो 1 से 8 दौरों को बनाते हैं और वहाँ अच्छे से समझाया जाता है और दर एक विषय में और यहाँ घड़िए और ऐसा आते विषय पे नहीं आते
8: There are no desert schools for older children.
18: महसूस होता है कि ये इस इन बच्चों में भी कुछ IQ पावर अच्छा होता है कुछ बच्चों में लेकिन उनको पूरी तरह से गाइडेंस न मिलने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते
8: Far from the bus schools and salt fields, some traders have built large fortunes from the salt harvested by the Agariyas.
19: The party har chap karta nahi ho jo party hamare ekdam chokha chao ji ek to udan hai asal.
17: Aur ye sab bag kahan ja rahe hain sir?
20: Ye UP mein MP mein.
17: Ye sab aapka hai?
20: Sab yahan se ye diwal se wahan last tak mera hai. Kareeb 10000 chaurus meter ki jagah hai.
8: Hingor Bhai is one of the biggest traders in the area. He pays advances to as many as 100 families each season. For him, the storm hasn't been entirely bad for business.
20: Namak ka production kam hota hai to demand zyada rehti hai. To aaj ke samay mein demand achhi hai. Pura area dher ban jayega. Kareeb 17 18 lakh ton namak yahan banta hai.
8: Last year, Hingor Bhai and other traders opened a processing plant to meet rising demand for packaged salt. Today, he's inspecting the production line with his factory manager.
21: ये इस तरीके से अपना 1-1 किलो पैकिंग होता है। इन 13 मशीनों में पर मिनट 60 पाउस की कैपेसिटी रहती है मैक्सिमम।
8: Most Agariyas never sell directly to the companies whose brands appear on supermarket shelves. Instead, their salt typically passes through middlemen.
21: Abhi to apne paas maan lo ek brand hai kabhi 10 brand ho to sabke ikke thi aapke thi dono milega.
8: Workers say they are often paid less than half a cent for each kilogram of salt they harvest by hand. Once packaged, the same salt can sell for up to 35 cents a kilogram. But when asked whether rising profits mean traders should pay Agariyas more, Hingor Bhai says the responsibility lies elsewhere.
20: जो अगरिया कल्याणकारी योजना का फंड है

0: वो सही ढंग से सरकार ही मैनेज नहीं करती। यदि सरकार मैनेज करती तो उनको शिक्षण का, आरोग्य का, उनके बच्चे के जो भी सुविधा है वो ज्यादा दे सकते।
1: बैक इन द डेजर्ट फैमिलीज लाइक किशन्स आर स्टिल वेटिंग फॉर हेल्प।
2: चलो हवे आपणे दादे जईए, बरोबर? अहीं मीटिंग राखेली है। सबसे मुश्किल जिंदगी आगरिया की है यहाँ गुजरात के अंदर, लेकिन सरकार कुछ करती नहीं है, यही कुछ पता नहीं चलता। हर बार ऐसा, हर साल ऐसा होता है, लेकिन आज तक सरकार कुछ करती नहीं है। अब इस बार भी मीटिंग है, अब मीटिंग में हम जा रहे हैं, अब देखते हैं कि इस बार सरकार कुछ करती है या नहीं करती।
3: आगरिया भयो केवा मनात करता मजूरी अने रण वचारे गुजारो करता ए आवो मेघ रे ए राजा नो थयो टांडो अरे रे कैक तो नू से अमारा यासू।
1: The meeting has been organized by a group advocating for Agaria rights. Harinesh Pandya and his team have traveled from Ahmedabad, Gujarat's largest city.
4: अगर दूसरे कोई traditional occupation में ऐसा disaster आता तो इस हफ्ते, एक हफ्ते के अंदर 15-20 लोगों ने suicide कर लिया होता। लेकिन इनका जो जिगर है, ये मुसीबतों को झेलने की जो ताकत इनकी है community की, अगरिया community की, पूरे रण के अंदर देखें तो करीब करीब 80 करोड़ के आसपास
5: huge loss
4: है। और अगर ठीक से पूरा, अगर हमें लगता है, हमारा, हम जो देखते हैं तो लगता है कि 100-120 करोड़ के आसपास नुकसान।
1: द ग्रुप इज कॉलिंग फॉर अ डिजास्टर रिलीफ पॉलिसी सिमिलर टू द कॉम्पेंसेशन स्कीम्स अवेलेबल टू इंडियन फार्मर्स अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वेदर।
6: एक बात चोखी स्पष्ट करी કે રેવન્યુ વિભાગ અને ગુજરાતનું જે આ ડિઝાસ્ટર મિટિગેશનનો જે વિભાગ છે, હોનારત સામે રાહત કરવાનો હજી એકાદ વર્ષ એમાં જશે આખી પ્રક્રિયામાં।
1: ફ્યુ સિનિયર ઓફિશિયલ્સ હેવ કમ ટુ ધ મીટિંગ, નન આર ફ્રોમ ધ ડિપાર્ટમેન્ટ્સ રિસ્પોન્સિબલ ફોર ડિઝાસ્ટર રિલીફ।
7: તમારા મહેનતથી મિત્રો તૈયાર થાય છે, તમે જે મહેનત કરો છો બરોબર, એમાં અમે સહભાગી થઈએ।
1: એન્ડ ધોઝ હુ આર હિયર ઓફર નો કોન્ક્રીટ હેલ્પ।
8: તમે જે મજૂરી કરો ને એ તમારા બાળક ના કરે, એટલા માટે હવે તો મજૂરી કરીએ તો અમે એજ્યુકેશન જોશે।
1: કિશન ઓન્લી ગેટ્સ ધ ચાન્સ ટુ સ્પીક અવર્સ લેટર, બાય ધેન સેવરલ ઓફિશિયલ્સ હેવ ઓલરેડી લેફ્ટ।
9: જે મારું એકનું જ નહીં પણ આખા રણની અંદર તમામ આગોરિયાના ઘર પરિવાર બધું જ રણપણ થઈ ગયું, છાપરા ઉડી ગયા, ટાંકીઓ ફૂટી ગઈ, ક્રૂડના બેલર ઉડી ગયા, સોલર પ્લાન્ટ તૂટી ગયો, મારા મીઠા વારેલા પણ નથી, મીઠા પાટાની અંદર જ છે।
1: The scale of their losses is clear.
3: પણ સરકાર ને કોઈ જઈ કે જો અમારી વેદના અરે રે કઈક તો લોસે અમારા આંસુ
10: નહીં ગુજરાતી હોતા હે લેકિન મેને સબ કે લિયે આંસુ બહાયા સબકો દુખ હુઆ હે ઇતના।
1: Multiple government authorities refused our requests for an interview. A junior official did not say if the salt workers would receive support. So, we're heading to Ahmedabad to meet the president of India's Salt Manufacturers Association. Bharat Rawal represents some of the country's biggest salt producers. Despite growing concerns over erratic weather, he says the industry's overall outlook remains strong.
11: During 2024-25, we achieved 49 million ton of production, which is more than US salt production.
1: Rawal dismisses the idea that the salt industry itself should do more to help workers.
11: हमारा तो business है और CSR activity हमारा है, ये development का, अगरिया का ख्याल रखना, जैसे गमबूट देना, गोगल्स देना।
12: फिर भी कोई पहने हुए बहुत कम
11: दिख रहे हैं। वो एक मीथ है कि अगर मैं जूते पहनूंगा तो मेरी स्पीड कम आएगी, लेकिन इनकी तो जिम्मेदारी है सरकार की, वो पल्लू झाड़ रहे हैं उनको पूछो।
1: रावल इज आल्सो अ मेंबर ऑफ गुजरात सॉल्ट एम्पावर्ड कमिटी, अ गवर्नमेंट बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर अगरिया वेलफेयर अमंग अदर इश्यूज। ही बिलीव्स द गवर्नमेंट हैज निग्लेक्टेड वर्कर्स।
11: खाली फंडिंग से नहीं होता है ना, 40 करोड़ दे दिया लेकिन एक भी मीटिंग नहीं बुलाओ तो कैसा पैसा खर्च होगा। और अगर सीधे शब्दों में बोला जाए, आज के दिन में जो माई बाप बोलते हैं ना सरकार में, इस इंडस्ट्री का माई बाप ही नहीं रहा कोई।
1: गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स रिव्यूड बाय 101 ईस्ट शो द कमिटी हैज ओनली मेट ट्वाइस सिंस 2020। द गवर्नमेंट्स ओन ऑडिटर्स रेकमेंडेड रेगुलर रिव्यूज to ensure welfare schemes actually reach Agaria families. Back in the desert, Kishan's season has finally come to an end.
2: हम लोग इसको पूरा सामान जो है यहाँ छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पानी भरा हुआ होता है। वो पानी इतना के 5-6 फुट पानी होता है।
1: For Kishan's family, returning to the village means clean water and electricity.
2: Rudra, niche. Ek ek vastu mukto re, gamme ti ek. Gamme ti ek vastu niche aayi mukto re. Aa baju ni nime ek mat bharavan. Bas.
1: But Kishan must stay behind a little longer. He still has salt to load and must speak with his trader to see if a season's worth of work will earn him anything at all.
8: હવે મારું મીઠું તો ગયું બરોબર, પણ આમ કેવું લાગે તમને કે
2: હવે હિસાબ ફાયદા ખબર પડે ને?
8: હા, એટલે આમ તો આમ ચેલુક માથે રહેવું.
2: ગઈ સાલનું તો હવે શું ખબર પડે, જેટલું મીઠું થાય ગઈ સાલ કરતાં મીઠું ઓછું થાય. ગઈ સાલ તો આપણે 11,000 બોરી થઈ, આ વખતે 8,000 બોરી થાય.
1: Most Agaria families won't know whether they've made a profit or a loss until traders settle accounts months later. Last season, Kishan earned about $350 in profit. This year, he expects to be left in debt.
12: और आपके हाथ में कितने पैसे आएंगे?
8: नहीं आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। अगर अगले साल में फिर से ये पाटा तो करना ही पड़ेगा, जब कर्जा उनका है तो काम तो करना ही पड़ेगा। वो फिर अगली साल जो नमक बनेगा उनमें से कटेगा। अब हम लोग तो कोई भी आगरिया जो है उनको कुछ कह नहीं सकते सेठ को।
12: क्यों?
8: क्योंकि वो बोले कि मेरी वजह से जो नुकसान होता तो मैं कुछ करता, ये कुदरती आफत है।
1: Several months after the storm and despite a government survey of the damage, no support has been announced for workers like Kishan.
8: कोई हमारी बात समझता ही नहीं है। हर चीज के बगैर चलता है लेकिन नमक के बगैर किसी को भी नहीं चलता है। बना रहे हैं हम लोग लेकिन हमारी कोई कदर ही नहीं है। कुत्ते की तरह हमारा जीवन होता है यहाँ, पेट भरने करना बस, दूसरा कुछ नहीं।
1: India's salt industry generates more than $2 billion a year in revenue. Yet, the workers at the very bottom of the supply chain struggle to survive from one season to the next.
5: It's taken nearly a week of driving and crossing international borders for these people to reach Omdurman. They're part of a government-run voluntary return program. They've come back home to Sudan from Egypt, where they fled more than 3 years ago to escape the fighting.
13: The first thing I'll do is find my home and see what has become of it.
5: The army regained control of the city last year, prompting a wave of returns. But 2 years of fighting have left their mark. Getting here is the first step. Now, many have to figure out how to move on with their lives.
14: Is the US-Israeli war on Iran dragging the world to an economic meltdown? Join me, Steve Clemens, every week where I'll bring you the latest analysis on the global fallout of this conflict. Pull apart fact from fiction and get to the bottom line.
15: Your weekly take on US politics, The Bottom Line.
16: Sleeping Path Birch. You can cook in this. It's a radio, a multi-tool which everyone should carry.
17: From preppers to doomsday tourism and eco-anxiety therapy.
18: Why do they come here? Religion, politics, finance, war.
17: Apocalypse Maybe discovers how people are coping in the end times.
19: What has the poor young generation coming through got to live for?
16: I just feel like I told you so.
17: Dealing with this feeling on Al Jazeera.
20: As international alliances shift, where does the global South stand? And what is its vision for human rights and democracy?
0: What does the Global South think of human rights? What does the Global North think of human rights? They have spat on human rights. They've spat on humanity.
21: Ken Roth speaks with acting chair of the Hague Group, Varsha Gandhi Kota Nelutla.
0: When we've tried to band together, they're called cartels. When the North tries to band together, they're of course clubs, right?
21: Reframe on Al Jazeera.